0: बस एक औरत है। हाँ, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगता है ए जंग करना जान दी है, पर मैनू नहीं हरा सकती।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते भारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि ओ कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान तार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस ये कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानती सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदों जिन कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है, उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुके होना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं

0: सत्य करवा सका कि मैं कोमल नहीं बल्कि बहुत बलवान भी हाँ। मैं एक योद्धा भी हाँ ते एक शहजादी भी हाँ। ते मैं इत्थे होरा दी मदद करन लई हाँ।
1: वाह, सानू नहीं पता सी कि इसका कितना गूढ़ा अर्थ है।
2: हाँ, इते असल विच बहुत वधिया जापता है।
3: हाँ, मैं ते बहुत प्रभावित हुई हाँ। असी तुहानू गलत परख्या।
0: मैं अरदास करदी हाँ कि असी कोमल ते शक्तिशाली औरता बनीए जो इस दुनिया नू रोशन कर देन। मैं तुहानू जान के बहुत खुश होवांगी जे तुसी चाहो।
2: एहो जापदा है तुहानू भी बहुत कुछ जानकारी है। असी भी थोड़े बारे होर जानना चाहवांगे।
1: कि आज तुसी खाने लई साडे नाल बैठना पसंद करोगे?
0: हाँ जी, क्यों नहीं है?
4: ते सारियां कुड़ियां हुण एक नवी सोच नाल अगे वधदियां हन। जदों असी बीबी शरण कौर वर्गे शहीदां नाल जुड़दे हाँ, पूरी कायनात विच ऐसा कुछ नहीं जो सानू बदल सके जां डरा सके।
5: असी हमेशा लोड़ पैण ते अंग संग सहाई हुंदे हाँ। असी शहीद इत्थे गुरु दे प्यारियां दी राखी लई सदा मौजूद हाँ। अपने सिक्खी दे प्रेम लई सदा दृढ़ रहो ते असी वी तुहाडे नाल रहांगे।
4: असी यह हमेशा याद रख सकते हाँ कि गुरु गोबिंद सिंह जी साढ़े पिता हैं ते माता साहिब कौर जी साढ़े माता जी हैं।
6: खुशियां दे जयकारे गजावे सो फतेह पावे, शहीदां सिंघां सिंघणियां दे मन नूं भावे। सत श्री अकाल।
7: You are listening to SeekNet Radio.
8: SeekNet presents Stories for Children.
9: Once, a very, very long time ago, there was an innocent child named Farid. He was born in a Muslim family, and his mother was a very spiritual woman. She believed that her son was really a child of God. She was a loving mother, so she tried to teach her son about meditating.
10: My son, the best thing to do is meditate on the merciful Lord. Why don't you sit and close your eyes and do Simran?
11: Ma, if I do Simran, then what will I get in return?
9: His mother replied,
10: Well, when we do Simran, we look really sweet to the Creator. So the Lord gives us sweets to eat.
11: Sweets? I love to eat sweets.
9: So Farid, the little child, sat on his mat, crossed his legs, closed his eyes, and started Simran.

0: ये कहानी पसंद आई होवे तो स्टोरिया होरी वीडियो सब्सक्राइब करो।
1: You are listening to SeekNet Radio.
2: आप सबना दा निक्की जी कौर जिंद दे जीवन विच जी आया नू। अज जिंद कौर दा उस दिन नवे स्कूल विच पहला दिन। ओ बस निकलन तो पहला अपने सवेर दा नितनेम कर रही है। ओ सोचती सी कि अज सब कुछ ठीक रहेगा, पर जिंदगी एनी सौखी नहीं। जिंद कौर तुहानू एक आम जी कुड़ी जरूर लगेगी, पर ओ आम दी परिभाषा तो कितने दूर है। जिंद कौर इन्ना पाठ करती है, इन्ना नाम जपती है कि सचमुच उसके कोल रिद्धियां सिद्धियां हन कि वह दूजे लोगों विच सफर कर सकती है।

0: बस एक औरत है हा, इहदे नाल तां मैं इकल्ला निपट लवांगा।
1: ओ ना निपटा सकिया, बल्कि मैं ही जल्दी नाल ओनू निपटा दिता।
2: वाह, लगदा है ए जंग करना जानदी है, पर मैनू नहीं हरा सकदी।
1: गुरु साहिब जी ने आप मैनू बल बख्शिया, मैं एक नू मार मुकाया ते नाल ही होर जने मेरे ते पारू हो गए ते नाल दे नाल ही उन्हां नू भी खत्म कर दिता। मैं एक पल लई भी गुरु नू नहीं विसारिया। मैं बयान नहीं कर सकती कि उह कहो जिहा महसूस हुंदा है जदों कोई इन्नी बिपता विच होवे ते अपने गुरु दा ध्यान धार रहा होवे। गुरु जी दी शक्ति ते किरपा हेठ होना मैं बस यह कह सकती हाँ कि मैं इन्ना जानदी सी कि इसका कोई फर्क नहीं पैंदा जो मेरे नाल हो रहा है। मैनू महसूस होया कि मैं इकली नहीं हाँ। मैं चारे पासों रोशनी नाल किरी हुई हाँ। अखीर वह मेरे ते हावी हो गए ते मैं निहत्थी हो गई। उन्होंने मैनू भी सुलगदी हुई अग विच सुट दिता। मैं अंत तक लड़ती रही, फिर मैं अपने आप नू इस मंडल विच पाया। गुरु साहिब पहला तो ही इत्थे सन, मेरा इंतजार कर रहे सी अपनी निगी गलवकड़ी नाल।
3: मैं हुण देख सकती हाँ, दुनिया नू लगता है कि तुसी बड़े दुख दा सामना करता, पर तुसी ता कुछ होर इसदे बिल्कुल उल्ट महसूस किता।
1: हुण तुहानू सब समझ आ गया ते तुहाडे नाल भी यही गल है। जदों तुसी गुरु पिता जी नू पुकारिया तां तुहानू पता ही नहीं सी कि तुसी की करना है, क्योंकि तुसी अपने आप नू असमर्थ समझिया। हुण तुहानू किवें दा महसूस हो रहा है?
3: मैनू एवें लग रहा है कि मेरे कोल दुनिया दी सारी शक्ति होवे।
1: ए शक्ति गुरु दे पासों ही प्राप्त हुंदी है। साडे नाल अपना मेल जरूर रखियो सिखी विच रह के।
4: उदो जिंद कौर गुरु गोबिंद सिंह जी दे सुपुत्रां नू अपने सामने प्रगट होंदे देखदी है। उन्हां दे पिछे होर भी काफी शहीद सिंह हन।
5: तुहाडी सच्ची शरदा दे पलां विच असीं तुहाडे नाल हां ते तुहाडे लोड़ दे वेले असीं तुहाडे नाल खड़ांगे। कदे लुकियो ना, दिखा दो दुनिया नू कि तुसीं कौण हो।
3: मैनूं नहीं लगदा कि मैं दोबारा करजी दरांगी।
5: हा हा हा, शाबाश। पर जे तुहानूं कदे डर लगे भी, उदो समां है योधियां दीआं वारां गाउण दा।
3: अच्छा, ओह कीड़ी वार है?
5: साडे कोल बहुत सारियां वारां ने।
1: मैनूं लगदा है इस समें ए वार साडे गाउण दे लई बिलकुल ठीक है।

0: पर मैं तो उस सही रस्ते ते चले आ गुरु जी दे वल।
1: की सिगरेट पीन दा मन है? एले सिगरेट पी, तेरी पत्नी नु है कदे भी पता नहीं चलेगा कि तू मेरे नाल है।
2: ठीक है, इस बार मैं इस दिन नाले समा बितावांगा।
1: चलो चलिए, मैं चाहती हूँ कि तू मैनू बहुत कुछ खरीद के देवे।
3: ता उस बुरे दोस्त ने घर विच बनाईया मिठाइया गुरु जी नू नहीं दितिया जो उसने वायदा किया सी। इस दी बजाय उसने शराब पीती, सिगरेट पीती अते अपने पैसे दा जुआ खेडिया। उसने उना लोका नाल अपना समा बिताया जो कुछ चंगा नहीं करते हुए अपनी जिंदगी बर्बाद करते हैं।
1: गुरु जी नाल समा बिताना की हो जा लग्या?
2: अच्छा, ओ गुरु जी, हाँ, चंगा से बड़ा आनंदमय से थे, बड़ा ही चंगा से।
1: की उन्होंने सारी भेंटा स्वीकार की थी?
2: पेंटा केड़ी पेंटा? अच्छा, मिठाइयां। हाँ मिठाइयां उन्होंने रख लिया थे कि आखिर हाँ आशीर्वाद, हाँ कुछ दे कुछ बहुत आशीर्वाद। हाँ
3: इस दौरान दूजे दोस्त ने अपना समा गुरु जी दी अते उना दे संत रूपी भगतां दी संगत विच बिताया सी। हे गुरु जी, मैं तुहाडे तो कुर्बान जांदा हां, किरपा करके पेंटा स्वीकार करो, एस दी वरतों गरीबां दी सेवा लई करो। हे महान गुरु, मैं तुहाडी सेवा विच सदा हाजर हां, किरपा करके मैनू अपने चरणा विच जगा दियो। हर रोज उदोवें काम तो अपने घर वाल इकट्ठे तुर के जांदे अते फिर अपने अलग अलग राहां ते चले जांदे। एक गुरु जी कोल उना दे वचन सुनन,
4: वाहे गुरु,
3: शब्द गाउन,
4: वाहे गुरु, वाहे गुरु,
3: दान करन अते साध संगत नाल समा बिताउण लई चला जांदा अते दूजा दोस्त उस औरत कोल चला जांदा। उसने अपनी पत्नी अते बच्चियां नू झूठ बोलिया अते उना दी पेटां दी दुरवरतों कीती। उसने उना दा पैसा जुआ खेडन, उस औरत नाल शराब अते सिगरेट पीण विच खर्च कर दिता। उसने अपना समा बुरी संगत विच बिताया, उना नीवे लोका नाल जो अपनी जिंदगी खराब करदे सन। एक कई दिनां तक हर रोज हुंदा रहा। आखर विच एक दोस्त ने कहा,
2: मेरी गल सुन, तू अपना सारा समा गुरु जी दे कोल चंगे काम करदे होए बितौना है, जदकि मैं अपनी पत्नी नू झूठ बोलदा हां अते मैं अपना सारा समा माड़े कमा विच बर्बाद करदा हां, पर फिर भी अपनियां जिंदगियां नहीं बदलियां। तू भी उही है जो पहला हुंदा सी अते मैं भी उही हां, ता फिर की फर्क पैंदा है कि असी चंगा करिए जां माड़ा? अपनी जिंदगी तां उवें है जिवें पहला सी।
3: दूजे दोस्त ने कहा,
0: आओ आपा ये सवाल उस ईश्वर तो पुछिए, मैनु विश्वास है कि आपा नु सही उत्तर मिलेगा। कल नु मेरे गुरु जी दे मिलन तो बाद अते तेरे ओ सब कुछ करन तो बाद जो तू करदा है आपा एथे ही मिलदे हां, आपा इस रुख हेठा ही मिलांगे अते आपा नु जवाब अपने आप मिल जाएगा।
2: इंज ही करदे हां, मैं देखन ले उत्सुक हां कि की होण वाला है।
0: ठीक है मेरे दोस्त, हुण आपां कल ही मिलांगे।
3: अगले दिन ओ गुरु जी कोल गया अते संगत दी निघी गोद विच बैह के उसने रूहानी वचन सुने अते गुरबाणी दा गायन कीता। दूजा दोस्त उसे ही औरत कोल दोबारा गया। ओ इंसान जो हमेशा माड़े काम करदा रहा तय हुए टिकाने ते पहला ही पहुंच गया।
2: की तू इत्थे है दोस्त? नहीं।
3: उन्हें इंतजार कीता, होर इंतजार कीता अते जदों ओ इंतजार कर कर के अक गया ता उसने मिट्टी विच कुछ लकीरां खिचनियां शुरू कर दितियां। मिट्टी विचों उसनू सोने दा एक टुकड़ा मिलिया।
2: सोना?
3: उसने होर खोदिया, उन्हें कुजा मिलिया। उसने सोचिया,
2: आज मेरा दिन चंगा है, हो सकता है इत्थे होर भी सोना होवे।
3: पर उस कुजे दे अंदर सिर्फ कौड़ा सी।
2: कौड़ा? ओहो, ये तो बड़ा निराशाजनक है, पर शुक्र है मैनू एक सोने का टुकड़ा तो मिलिया, चलो यही सही है।
3: फिर थोड़ा समा इंतजार